ई अलुतखुन्ना रोज कमगे अदि मरवेफावा रशे एफेनुन तिमन रसकलांगे दिरुवीमे खब्बल तखुन नुकुतुम वेस्वनी एफदैने

0: Report levé à Cheikh Ahmed Mamoun.
1: Rasul Bekaluna Nabi Bekalunga Siratake Irshada Nasehat Gedamare.
0: Edamar Galing Hode Tajubaike Hayat Girasta Fasia Gengustene Arukati.
1: ए आरु काटी गई हीं माध्यम में आकोशार कुराता के चकी हेओ हलाल तक के चंगा दमा
0: दीनों के अड़ूंगे नस्ते नी
2: रसूलुन्ना नबीयो
3: हो मधु के में दुरुंग अम्ब्रा देख चाहेरो रिपीट अंगार दो के हैं दुनो आकड़ तेरे हूँ आदि पुत्र दो के रे तिहकड़ तेरे हूँ
0: हमें कनी नोदिया में गर्ड्स दीनु गेडू
4: हिमाबी रक्का तेरुं
5: हिमाबी वैक्सीन दे डोस हम करुं
4: साबुन लागें अद्दों
5: कैसा किंबी अलार्नमा अंगे आने फिर निवा करुं
4: हिमाबी के एविस अलामातें हुरे नमा मास्क एडुं
5: आदि हिमाबी के अलामातें हुरे नमा एका हरिवुं
4: हिमाबी के अलामाते फिर निजनमा लसनु करवा सिही फरवा हो दवा
6: كيرت القرآن جاء العنكبوت سورة جاء فانساس هيبنا آية جاء الله تعالى وحي كربا فاوي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ماني كم نفسكي بس مرج رهل بجنانه اتشك دن تيابا ميهم امبري رجوع كربا هشي تمن رسكلان جاء حضرته
5: मैं आरोग्य दिन हिंदुनों तिहे जही मी दीनु क्या डॉ